शब्द है कानड़ा मोहल्ला चौथा पड़ताल। मन जापहो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमत गुरमुख कड़ टकसाल, हर हो किरपाल। किरपा होवेगी होवेगी, मन नाल जपो सतनाम। कोई भुलेखा नहीं रहिंदा, थोड़ा जा ध्यान देने की लोड़ है। किरपा होएगी हो दो बार आख्या, होवेगी किरपा होवेगी किरपा। पर मन जापहो राम गोपाल, वो सृष्टि नु पालन वाला जिहड़ा जर्रे जर्रे च है, उनू मन करके जपो। मन और जबान एक करके आखो सतनाम। यह मोलक रतन है। मन जापहो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमुख कड़ टकसाल, हर हो कृपा। ये अस्थाई है, ये चार ताल च। पहला अंतर है तुमरे गुण अगम अगोचर एक जी क्या कथे बिचारी। तेरे गुण बेअंत ने ते मेरी एक जबान की कह सकती है। तुमरे गुण अगम अगोचर एक जी क्या कथे बिचारी, राम राम राम राम लाल, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। तेरी गति नू कोई नहीं जान सकता, सब आखो सतनाम। हर की गत ने को जाने, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। हों हर जब पई निहाल निहाल निहाल, तेरी गति नू तू अगाध बोध है, कोई जान नहीं सकता। पर यह जरूर है कि जेड़ा जपूगा ना वो निहाल निहाल निहाल हो चुका। तू बेअंत है, तेरे गुण बेअंत ने, कोई जान ही नहीं सकता, बेअंती है। आप शब्द रोज पढ़ते हैं, तू सुल्तान कहा हों मियां, तेरी कौन वडाई। किसी बादशाह नू क्या जो आओ मियां जी, तू सुल्तान कहा हो मियां। एक बादशाह नु क्या जाए मियां जी, ये कोई वडियाई तो नहीं। गुरु नानक साहब कहते ने तू एडा वड्डा है, जो तेरी उस्तत होण तक हो रही है ना वो इन्हीं की है कि किसी बादशाह नु मियां कहा जाए। तू सुल्तान कहा हो मियां, तेरी कमर वडाई। इस शब्द में महाराज कहते ने तुमरे गुण अगम अगोचर एक जी क्या कथे बिचारी, राम राम राम राम लाल, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। हों हर जप पई निहाल निहाल निहाल। दूसरा अंतरा है हमरे हर प्राण सखा, स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे हरे, राम नाम तन माल। जांको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, जन नानक हर जप पई निहा निहा निहा। हुण इसका कीर्तन इस सैकड़े वर्ष पुरानी गुरु साहब के समय की यह रीत है। गुरमुखा वालों हुक्म होया सी ये असी रीत कल वचन किया। सरदार प्रहलाद सिंह जी सास सुरेंद्र सिंह होर ने यह असी जरूर सुननी, क्योंकि सेवकों ने अज का कीर्तन ही है, फिर सवेरे तड़के चले जाना। असी इस वास्ते ये आपकी
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਇਹ ਆਪਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ।

अजूर माजी का भागा वाला दिन है ते सानू वो वस्तु मिल जाए ते साडा बैठ गया सब नाम को कीता सब कीर्तन कीता ते सुनिया सपना हो जाएगा करो अरदास जिने धरती पुटी है ओनू पानी जरूर मिले जिने धरती पुटी है ओनू पानी मिले जिने खोजिए है ओनू माल जरूरत है जिस सिख ने मन जोड़ के अरदास की है अरदासा मेरा धन गुरु नानक पहले सेवक बनेगा पिछे प्यार नाल सारे बोलो

सतन का रखा उसत कर कर जीवा नानक नाम महारस लिखा अंदिन मंत्र उसत करया करो भाई गुरु जी उसत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल वसना अमृत पियो सदा सुहेला उस गुरु चंगा कर दिता है ना ओदे विच भी रह के धन गुरु नानक कहते जी वाहेगुरु ने पुत्र दी दात दित्ती है पुत्र नाल भी प्यार करो पर ओदे नाल प्यार जरूर करो जिन्हें पुत्र बख्शिया है आप गुरु बाबा जी कह लगे निंदा करनी है अपनी करो उस्तुत करनी है गुरु दी उस्तुत करो ये गुरुमुख है ये गुरुमुख दी चाहिए तो कह रही सात संगत यह वचन ना बोलिए जिदे नाल किसी का मन दुख जाए हरी जी ने किया सब का मन माणक ठाहण मूल मचा गवा जे तो प्रिया जी सिके तो न खाई गुरु नानक का सिख जेदा गुरु इतना मिठा हो सिख तो कदे नहीं तोड़ा न प्यार भरे बचन चंगे बचन करो भाई चंगयाई दुनिया में बढ़ने सिख दी ये ड्यूटी ड्यूटी है आप जपो अमरे धाम की।

कीर्तन निर्मल कीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी मदानिया के ये समूल वस्तु दे ना मुल बन इस वस्तु का मुल बन अरुणा कीर्तन का पूरा नाम प्राप्त श्रीमान जिन्होंने कीर्तन रबी दास समझ के इसका आदर सत्कार किया है मरदानिया उन्होंने चोरिया मालिक पर मरदानिया यह की है महाराज एक सौ रुपये दिखाए अरुण कह लगे आप करनी है मरदाने जा वापस दे महाराज आप बना के मरदाने ने कहा सदगुरु मसा मसा माया का मूह वेखे है तुम कहते हो वापस अदूर कह लगे मरदानिया आप किसे चुकी फिरांगे मरदाने ने कहा महाराज तुम थोड़ा चुकनी मरदाना आप ही चुकी फिरेगा इतने जाओगे दो बजे कीर्तन सुनावे हम तू कदे नहीं खवागा महाराज भुख लगी अदूर कह लगे जी मरदानी असि मालिक के उस में जिथे जावे मालिक आपे प्रबंध करेगा वापस दे पले कचू न बंदे पंछी ते दरवेश और जिन्हों तकवा रबदा तिना रिजिक गिरी गांठनी बांधते जवे देवता खाए गोविंद ताके पीछे गिरे मत भूखे देगा एक सौ रुपये की थैली वापस दिखती सात राज अंदर और प्यार आया नौकर नु बुलाया धरका कोई रबी दूर आया है और ही सौ सुन के मन धरया है प्रसादे का थाल परोस लै मठियाई भी रख लै दुध का दड़वा भी भर लै इतना रुमाल पा के पूछा दे मैं दुकान बंद करके आऊंगा हाँ उस दादे के दर्शन करना अगर कम पहुंच गए पहला दिन के पदार्था का थाल रखिया मथा टेकिया हजूर ने अभी दृष्टि न तकिया सिर को नजर करम तिरकार नानक नगरी अगर कह दिया झोलियों पर उठिया मस्ती बैठा चाहते इधरों सात प्राय भी आए हजूर के दर्शन किए मन खरे हाथ जोड़ के किया गरीब नवाज दुनिया को उतारन वाले दुनिया को दाता देने वाले मेरी झोली ची है हजूर कह लगे सातराय की चाहना है पातशाह दुनियावी दाता सारी है हीरे दाल पन्ने पुखराए धन दौलत सोना चांदी सब कुछ है पर गरीब नवाज सब कुछ होंगे अजे मन का खप्पा पूरा नहीं होया खुद ही रहे मन नहीं रहे मन संतुष्ट नहीं रहे मन तो संतुष्ट ही नहीं हजूर कह लगे हां सारस राय मन का भोजन हो रहा है मन ही नाल नहीं रहना मंत्र मन पदार्था नाल नहीं रहना गरीब नवाज फिर करो कृपा अदूर ने सोचिया जरा तकिए अंदरों बोलता है कि बाहर अदूर कह लगे सालसराय तू देरी नाल आया है जेडी दात सी ना वो तेरा नौकर है महाराज फिर मैं अदूर कह लगे जे तो भी दात लेनी है तो नौकर दे चरना से है ऐसी कसौटी इम्तहान देखना से भी अंदर निम्रता लेके होवे ता नहीं पर सालसराय का जरा मन रूपी चोलिया सी वो बिल्कुल सुधैर अंदर शरदा पे प्यार की रो पिया हरी मनवाज ए तो मेरा बच्चा है पर जे तुसी आखो तो मैं तुहाडे कुत्तिया ने पैर च मना सकिया तो दास भक्त मेरे नाल तेरे मन भी तो दूर हो अजूर ने बख्शिश पीती सासरा जरा नेड़े हो दात मिलन लगी है तुसी भी मन करके नेड़े हो जाओ गुरु ने बख्शिश होने लगी है हजूर ने सालसराय के सिर से फिर प्रयास रखिया अभी उसकी की नाल तकिया किया सालसराय जब सतनाम कर हुकुम मस्तक हाथ रख दिचो मार करिया बरियाइया सह तुथे नाम नाम की दात जो जो सालसराय सिमरन नाल जुड़ा है त्यों त्यों मन सुखी हो जाए सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन हो निहाला चरण कमल तेरे तोरे तो पीवा मेरा सतगुरु तो अज सालसराय दोलियों कर दिखाई मेरे सतगुरु नानक ने क्यों ना भरे अज खास पूर्व भाषी का दिन आखो स्थिति भरे सालसराय दोलियां भरिया गई थोड़े उत्ते ही रहमत सूरज की किरण जिथे जाएगी अंधेरे को दूर कर दी जाएगी गुरु की मेह जिथे जाएगी चोरियों पर तो आओ प्यारी आप अनुभव
सर्वत्र माई साई जो अमृत है।

गुरु की प्राप्ति होगी, फिर सारिया जातों में किसी चीज की घाट नहीं रहेगी जिन्होंने पूरे गुरु की बख्शिश प्राप्त

0: मांगदेवरिया गोविंद मिलन की तेरी बढ़िया अवर काज तेरे कितने नकाम मिल सास संगत भज के वल नाम सरंजाम लाभ फौजल तरन के जन्म था जातर माया के खराब
1: जब तब

0: Bunura Saska Kata Sisa CSK Jigat Ke Isa Popan Vishti Gante Pahi Sabhi Naam Badaye De Dhan Dhan Logan Ke Raja Dushtan Dagri Bunu Aja Akal Pohan Ke Sir Janhare Daas Jan No Leo Bare Kavyo Beg Pahin Chit Chopai Paashe Dasmi Hamri Karo Haad De Racha Purn Hoye Chit Ki Icha तब चरणन मरे हमारा अपना जान करो पितपारा हमरे दुसवे तुम काओ आप हादे मोय बचाओ सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा निज कर देख करिए सा पैरन को वास करिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रे प्यासा तुम्हें छाड़ को वर ना त्याऊ जो बरचाऊ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास भरिए उज्जो सदा हमारे पच्छा श्री स्तुज्यो करियो रक्षा राख लियो रखन हारे सैब संसार प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चितर दिस्कंता काल पाए ब्रह्मा भवतरा काल पाए शिवजी अवतरा
1: काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जो सुखियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताय हमारा जवन काल सब जग बनायो देव दैन दक्षिण उपजायो आदंते के उतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार ते सिखो मारी सकल प्रजा दिना सवारी सिवन को सिवन सुख दियो छत्रन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछान चीटी ते कुंचर स्थूला
0: सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जान जब युद्ध कर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे हवारा जब आकर कर तो कबू
1: तुम्हें मिलत दे तरसम
0: जेते बदन से सा थारे आप अपनी बुद्ध उचारे तुम सब ही तेरे

कौन सिमट प्यो शंकर खेटा सगली शिष्ट गाय चंबो आजुगा सरु संयंबो और अच्छा मेरी तुम करो सिख बार असिख संगरो दुश्चित पाता सकल कलेश करुणा खाता जे अस्तुता सरणी परे तिनके दुष्ट दुख है मरे पुरख जमन पाक परे त्यार है तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आया ताके काल निकटनी आया रक्षा होए तय सब काला दुष्ट रिष्ट रे तत्काला कृपा दृष्टान जान हरो ताके ताक तरको हर हो सब होई दुष्ट है अच्छा सके न कोई।

0: कन्हैया पाएंगे जब ते तुम्हारे तब ते को राम तेरे नियाने राम नीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न मानो
1: सिमरो शास्त्र वे सबे वो भेद के आम एक न जानो कृपा तुम्हारी कर मैं न क्यों सब तो ए बहानो सगल द्वार को छाड़ के
2: गयो तो हाथ।

सतगुरु मैं पाया सतगुरु ते पाया सहज छेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्दो तो गावो वारी केरा मंजनी मसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मना मेरिया तू सदा रो हर नाल हर ना रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गला समरा स्वामी सो क्यों मना विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ चाहे जिस तेरे सो पाए सा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसाए नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो सात नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिठो जिस तीन वड्याइया कहे नानक सुनो संतो सवत रोपे यारो साचा नाम मेरा धारो वाजे पंचो चित कर सवागे शब्द वाजे कला चित करतारिया पाइन दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुरकरम पाया तुझे

0: बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहल तुरे।
1: थाल विच त्रिण वस्तु पई सत संतो विचारो अमृत नाम ठाकर का पाए जिसका सब साधार जी को।

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा में बच के आ गई। मैं आख्या ये मर्दा मर्दा बच के आए, वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा है मैं हुण बचना है, ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजलि देनी शुरू कर दिंदा, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दिंदा। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवी, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे

दौलत दाम दीवान मकान नादान, इस नादान बंदे ने सिर तोड़ सिर ते पैर रख के इन्ना सब कुछ बनाया नादान। फिर मेरा हुक्म हासिल होवे, मेरे को चार कोटा भी वधिया होन, ते फिर इन्हां दा गुमान करी बैठा है। वाह वाह, एक ने आके कहा धर्मराजा नूं मेरा राज सी, वो कहन लगा गलत बात है, ये तो तेरा प्यो जदों सी वो भी कहंदा सी मेरा राज है। तेरे प्यो नूं पुछया पे केदा राज है, वो कहंदा मेरा, जदों वो चल गया तो वह तो पिछली पीढ़ी देख लो, तेरे दादा भी यही गल कहंदा सी, तेरा पड़दादा भी यही गल कहंदा सी, तेरा नकड़दादा भी यही कहंदा सी, पांच छे पीढ़ियां तो तेनू गुणा दे, नकड़दादा पड़दादा दादा प्यो तू ये सारे कहंदे सी मेरा, पर तू हुण जा रहा हुण किहदा है, हुण किहदा, तेरा नहीं है। नादान ने सारियां बातां कहियां, दौलत दाम दीवान मकान नादान, गुमान ना करो, इहदा गुमान ना करो, असीं इहदा ही करी जांदे। राजा साहब का बचन देखो, बरसी मनाने का तां फायदा है जे असीं उन्हां दा बचन सुनीए और उन्हां दा बचन मनीए। अगली बात है जी, कहंदे जिहड़े तेरे नाल शरीक जुड़े हो ना, तेरे घर वाले, तेरे पुत्र तियां रिश्तेदार, गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे ने पूर्व जन्म के मिले सहयोगी, पिछले कर्मां दे जिवें खूह दियां टिंडां जुड़ियां पईयां ना, खाली तुरी जांदियां, भर के आ जांदे, खाली तुरी जांदे, पानी डुली जांदा, ये तेरे पूर्व जन्म के मिले सहयोगी, अंते को ना सहाई, सहाई बचने मारे। धन्यवाद, मैनू डाउट सी थोड़ा जिहा, बहुत मेहरबान। ए तियां पुत्र रिश्तेदार तेरी घर वाली और तू पूर्व जन्म के मिले हुए हो, ते अखीर वे लेवे किसे ने नहीं जाना, जे जाना तो कहें जाना, जे मात पिता सुत मीत ना भाई मन मुहाना।

रतन मणि गल बंद रह क्यों कीम न जाने। रतन मणि गल बंद रह क्यों कीम न जाने। करछी साओ न समले भोजन रस खाने। डड्डू चिकड़ वास है कमले ना सियाने। नाप कठूरी मिर्ग दे फिरदा हैराने। गुजर गोरस वेच के खलसूड़ी आने। बेमुख

छाय छुट्टड़ होई। मक्खन लया विरोल कै छाय छुट्टड़ होई। पीड़ लई रस गन्ने छिलछु है न कोई। रंग मजिठो निकले अड लहे न सोई। वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई। काया हंस विछुन्या तिसको न सथोई। बेमुख सुके रुख ज्यों

करते हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। ज्यू चक चूंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़िया बने न विच समावे।

मुंह कालख भरिए वड़िए कज्जल कोठड़ी मुंह कालख भरिए कल्लर खेती बीजिए केहो काज न सरिए टूटी पिंगे पिंगिए पैटोए मरिए कन्ना फड़मन तारुआ क्यों दुत्तर तरिए अगलाए मंदर समय तिस नाल न फरिए।

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लेक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लेक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत, नांगो तो न होए तो थेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरु शरण विमुख

अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास

कुत्ता राज बहालिए फिर चक्की चट्टे। कुत्ता राज बहालिए फिर चक्की चट्टे। सप्पे दूध प्यालिए व्यो मुखो सुटे। सप्पे दूध प्यालिए विहो मुखो सटे। पत्थर पानी रखिए मन हठ न घटे। चोआ चंदन पर हरे खरखे पलटे। त्यों निंदक पर निंदो हठ मूल न हटे। अपन हथी आपनी जड़ आप उपटे। अपन

ये सिर छार उड़ावे, तुम्हें अमृत सिंजिए उड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे, निंदक नाम भी होने सत्संग न पावे, मूर्ख सच न जाननी, निंदक

बैखा जै कूणे लसन लुकाया ना लुके बैखा जै कूणे काला कंबल उजला क्यों होए साबूने डेमू खखर जोछ है दिसे मुह सोने किते कम न आवई लावण बिन लूने निंदक नाम विसारिया गुर ज्ञान विहूणे

भगत नामदेव जी इस शब्द दे विच जिस थीम नू असी अज आरंभ करना है, जिस विचार दी लड़ी आरंभ करनी है, वो है नाम। ते भगत नामदेव जी अपने जीवन का जो निचोड़ है वो दस रहे हैं, ताकि सानू भगत जी के इन शब्दों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिल सके, कोई समझ प्राप्त हो सके। कहते हैं, मैं अंधलहे की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं अन्ना हां, अंधा हां, पर तेरे नाम की स्टिक जो है, तेरे नाम की जो छड़ी है, वो मेरा आसरा। पाप के तेरे नाम की मैनू सपोर्ट है, तेरा नाम मेरा सहारा। पाप के तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम

0: दुख पेन सफरिंग मिजरी कहते कहते जहर है लाइफ की, पॉइजन है दुख मोहरा, मोहरा मैंने पॉइजन। जितने भी साड़ी लाइफ पेन है मिजरी है दर्द है सफरिंग है वो कहते एक जहर है। हुण उस जहर का इलाज की है, मारण लफज वरत्या है, मारण का मतलब हुंदा मसाले पाके दवाई जो तैयार की जाए, अर्ब्स वगैरह पाके जो दवाई तैयार की जाए कहते उसनू मारण आखते हैं। अगर पेन एंड सफरिंग लाइफ के विच पॉइजन है तो उस पॉइजन नू केड़ी चीज मार सकती है, बहुत ज्यादा ध्यान दो, ट्राई टू बी फोकस्ड। दुख मोहरा दुख जहर है, उस जहर नू मारन दे वास्ते ऐ बड़िया इनकरेजिंग लाइन्स हन, इन द सेंस कि जिस किसे इंसान की जिंदगी अत दुख है सफरिंग है मिजरीज हन उदे वास्ते एक सोल्यूशन दसया जा रहा है, एक वे आउट है, एक होपलेसनेस सिचुएशन दे विच एक होप दिखाई जा रही है कि तुहानू वरीड होने की लोड़ नहीं, चिंता करने की लोड़ नहीं। अगर जिंदगी च पॉइजन आ गई है, दुख दर्द परेशानियां आ गई हैं, तो महाराज जी आखदे ने मारण, मारण का मतलब मसाले पाके कीती हुई तैयार दवाई, जड़ी दवाई है उस जहर नू मुका सकती है, कहते हैं वो है हर नाम, वाहिगुरु का नाम। दुख महारा मारण हर नाम, दुख नू मारण वाला शक्ति रखण वाला एक ही पदार्थ है वाहिगुरु का नाम। सो नानक के कारण सारे बोलो केवल नाम, इस पंक्ति नु याद करना है, वी विल गो ऑन रिपीटिंग दिस लाइन एवरी डे। नानक के घर केवल नाम, तो मैं तो बात बोल दिया करो, कितने नाल कोई आप दिन थकावट नहीं हो जाएगी। नानक के घर दुनिया दे विच बहुत ज्यादा इग्नोरेंस है, बहुत ज्यादा डार्कनेस है, ना समझी है, अज्ञानता है। तो महाराज जी ने पूछिए, महाराज इतनी अज्ञानता है इतनी ना समझी है इतना अंधेरा है, तो आप जी दे कोल की इंतजाम है इस अंधेरे नू दूर करन दा, चानन जगान दा। तो गुरु महाराज जी आखदे हन
1: दीवा मेरा एक नाम,
0: कहिंदे नाम ही एक ओ दीवा है जिहड़ा ह्यूमन लाइफ दे विच्चों डार्कनेस नू, सोसाइटी दे विच्चों डार्कनेस नू, पूरे ग्लोबल लेवल दे उत्ते डार्कनेस नू, इग्नोरेंस नू, इलिटरेसी नू जो दूर कर सकता है वो सिर्फ नाम दा दीवा है। कहिंदे मैं नाम दा दीवा लेके आया हूं। अते आप देखते हो जब दीवा बलदा है तो आहिस्ता आहिस्ता केड़ी चीज है जड़ी बर्न हो जाती है, जड़ी सोक हो जाती है, जड़ी खत्म हुंदी है, वो तेल हुंदा है, तेल खत्म हुंदा जांदा है। महाराज जी आखदे ने साड़ी सारी जिंदगी दे जड़े दुख हन उन्हां नू समझो तेल दे विच, नाम दा दीवा जगा दो, नाम दी बत्ती जगा दो, नाम दी बत्ती सारे ही दुखां नू बर्न करके रख रहेगी, जिस तरह जगदा होया दीवा तेल नू बर्न कर दिंदा है।

0: फिर महाराज जी ने पूछिए, महाराज धर्म दे विच पूजा का बड़ा स्थान है, पूजा धूप बत्ती बालो, जल छिड़को, फुल लियाओ, तलियां बजाओ, शंख बजाओ, बहुत किस्म दे नाल लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। आप जी की सुजेस्ट करते हो पूजा किमें की जानी चाहिए? महाराज जी आखते हैं साडे घर दे विच नाम ही पूजा है और कोई पूजा नहीं है, नाम जपना ही पूजा है। ए बाबा जी का जो नाम दे प्रति विचार आप जी सुना रहे हैं, कहते हैं
1: पूजा कीचे नाम त्याइए,
0: नाम नु त्याना ही पूजा करना है, जो नाम नहीं त्याउंदा बाकी रिचुअल्स करी जाता है वो बाहर बाहर है, बाहर बाहर है, वो पूजा नहीं। पूजा उदो हुंदी है जदों किसी का नाम दिल च वस जाए, वो पूजा हुंदी है। कहते हैं साढ़े घर के पूजा भी नाम जपना ही है और कोई पूजा नहीं है, कितना सिंपल है।

0: नाम जपण तो बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। सो इतों अच समझ लेना चाहिए और समझ के अपनी डायरेक्शन भी मोड़ लेनी चाहिए है। मेरा सुनना ही नहीं चाहिए, अमल भी करना चाहिए। अगर असि नाम जप रहे हैं तो समझ लो असी पूजा कर रहे हैं। अगर असि रोजाना नाम नहीं जपते तो कोई पूजा नहीं कर रहे। बाबा जी अगले पूजा कीजे नाम ते आइए, बिन नावे पूज ना हो। महाराज जी आप जी का तीर्थां दे संबंध की ख्याल है? स्पिरिचुअल क्वेस्ट दे विच इनलाइटनमेंट अटेन करन दे वास्ते, दुखां दा छुटकारा पाउण दे वास्ते लोग तीर्थां ते जांदे हन, पिलग्रिमेजिस ते जांदे हन, जिन्हां नूं होली प्लेसिस आख्या जांदा है। इस देर इज सच थिंग। महाराज जी आखदे हन साडे वास्ते नाम जपना ही तीर्थ ते जाना है, क्योंकि जो नाम जपेगा वो खुद ही तीर्थ बन जाएगा, खुद ही तीर्थ बन जाएगा। तो साडे वास्ते तीर्थ ते जाना भी नाम जपना ही। कहते हैं
1: तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ

गुरु महाराज ये दसो बहुत लोग वेद शास्त्र सिमरतियां ये लिटरेचर पढ़ते हैं क्योंकि असी भी वेद शास्त्र प्राण सिमरतियां आदि पढ़िए। महाराज ये आखते नहीं साढ़े वास्ते नाम जपना ही वेद पढ़ना, नाम जपना ही साढ़े वास्ते वेद और शास्त्र है। कहते हैं नाम हमारे वेद अर नाद, फिर ये गारंटी करते हैं कि नाम जपन के नाल साढ़े ऐस लोक दे भी परलोक दे भी सारे कार्य पूरे हो जाते हैं।

रब की पूजा भी साडे घर दे विच नाम जपना ही। अखीरली लंकती अखीरली जो पंक्ति है वो ते बहुत ही कमाल दी है कि गुरु महाराज जी ने ये आख्या है कि महाराज जी गुरु की सेवा किवें करिए, गुरु की सेवा किवें करिए। कहिंदे नाम जपना ही गुरु की सेवा भी है। जे तुसी नाम नहीं जपदे तो ओदा सब कुछ करदे हो, दिन रात मेहनत करदे हो। कईयां नूं हुंदा है कि सज्जन बहुत सेवा करदे हैं, पर महाराज जी की पंक्ति हुण सुनो।

ट्राई टू रिमेंबर दिस लाइन, नाम हमारे गुरु की से, क्योंकि गुरु की सेवा दे वास्ते बहुत ही कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, नहीं तो इंसान थां ते सेवा करने की बजाय बेअदबी करी जाएगा, गुस्ताखी करी जाएगा और सेवा करने नाल हौमे वधाई जाएगा। पर नाम है जो उसकी आत्मक अवस्था नू उच्चिया उठाएगा, हंकार नू मिटेगा, अते उस दे विच ही सिर्फ गुरु की खुशी है, और किसी गल च गुरु की खुशी नहीं। हुण तक आप जी ने यह सुनिया है, भगत नामदेव जी आखते हैं नाम मैं अंधा हां, जीवन दे रस्ते उत्ते जे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, किते पहुंच नहीं सकता। नाम कहिंदे मेरे जीवन का आधार। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दे बाणी दे विचों जो मैं प्रमाण दिते हैं ओ ए कहिंदे हैं कि नाम ही नाम है साडे घर दे विच, नानक के घर भूल गए हो, केवल नाम, नानक के घर केवल नाम, कहिंदे साडे घर च सिर्फ केवल नाम है और कुछ नहीं, नानक के घर केवल नाम, नानक दे घर दे विच सुप्रीम टेक्निक जो है, मेथड जो है, वे जो है वो सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जिना उधरे सारा संसार रोगी है, उसका एक ही दारू है, एक ही इलाज है, वो की है नाम। संसार दे विच बहुत इग्नोरेंस है, अंधेरा है, तो दीवा की है नाम। लोग अत्यंत लोग तीर्थां ते तुरे फिरदे हन, गुरु जी महाराज कहिंदे हन तीर्थ भी नाम ही है, नाम जपना ही तीर्थ इश्नान है, नाम जपना ही तीर्थ इश्नान है। कहिंदे नाम ही साडे वास्ते वेद शास्त्र है, नाम ही साडे वास्ते, नाम जपना ही रब की पूजा है, अते नाम जपना ही गुरु की सेवा है। सो ए है नाम की इंपॉर्टेंस, समा समाप्त है। आज सिर्फ उस विचार नू साढ़े आठ तक आते सो हुण तक असा यह सुनिया है कीर्तन का पहला हिस्सा के गुरु बाबा जी दे घर दे विच केवल नाम है, नाम ही दवाई है, नाम ही दीवा है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही पूजा है, नाम जपना ही सेवा। तो आओ प्यार नाल एक दफा उस पंक्ति नूं हुण गाइए, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंधले दी टेक छड़ी सोटी, कहिंदे ओ वाहिगुरु तेरा नाम है उस तो बिना मैं चल नहीं सकता, अते जो वाहिगुरु दे उस नाम दी छड़ी तो बिना चलण दी कोशिश करदे हन ओ गिटे गोडे जरूर तड़ाणगे, ओ गिरणगे चोटा खाणगे। सो आओ वाहिगुरु जी दे नाम नू अपना आसरा बनाइए, समझिए अते गाइए, फिर कीर्तन दा थोड़ा जा अगला हिस्सा मैं आपकी सेवा रखांगा।

अपने मन वृत्तियों नु जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी की सारी विचार नु अपने अंदर टिका के रखो जो सुने है। इतना कुछ सुनने तो बाद नानक के कर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगा नु खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग जहर हैं साड़ी जिंदगी उन्हों का इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु की सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिराकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनु प्राप्त करन दी इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो, जो कि तमाम चीजां दा इलाज है, किवें मैनू प्राप्त हो। उस दे वास्ते इंसान दे अंदर कितनी लॉन्गिंग चाहिदी है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिदी है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिदी है। जो इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीख रहा नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनु देखो कितनी है। वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सेटल हो ही नहीं सकती, उसनु चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

जी बहुत ध्यान दे नाल दिखदे हन तो उन्हां नूं सारी पृथ्वी जल्दी नजर आंदी है। ये जल्दी किस दे नाल है? ये पुछिए भी अग लगी हुई है बाहर? अग दा तां बड़ा अच्छा इंतजाम है, फायर ब्रिगेड नाल कितनी भी अग लगी होवे झट उसनूं बुझा दिंदे हन। ये जल किस दे नाल रही है? जल रही है ल्यों ल्यों ल्यों ल्यों करके फिरे सब लोग। अंदर तृष्णा है जो रजदी नहीं है, जो पदार्थां नूं वस्तुआं नूं मटीरियलिस्टिक चीजां नूं मटीरियल नूं हड़प करी जाना चाहती है, जिस तरह अग लकड़ा नूं हड़प कर जाती है। वो तृष्णा और लालच की अग जो अंदर लगी हुई है वो इसनू साड़ रही। तो कहते हैं जल जाओ जीवन नाम बिना। जिस जीवन च नाम नहीं है उत्थे ठंडक नहीं आएगी, वो तपेगा सड़ेगा जलेगा। अगली पंक्ति कहते हैं